0: ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਰਾ
1: ਓ ਤੂੰ ਚੱਲ
0: ਓ ਤੂੰ ਚੱਲ
1: ਹਟ ਪਰ
0: ਚੱਲ
1: ਪਰ ਚੱਲ ਹਟ ਪਰ
2: चमचे हद तारीफ दी ते चमचा नाम शैतान फूक शिका के माड़े नु भी कर दें दे पलवान भाजी किदा बनाउंदे न वाह पलवान जी थोड़े टौले अज तुसी टा दियो कंधा।